हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं सात अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच सात लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस। फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सबने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई, और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुरा हूं, गाइड। उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलो वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापुराव ने जवाब दिया, जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे। उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेड था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी सितंबर 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की
और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा। ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया। मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकेंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी। क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे। विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया। टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था। उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के चलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई। उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया। बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया। सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी। पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हां में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया, सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमे हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर दी, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब
मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन सात लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक।

स्वागत है आपका आचार्य 90 FM में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उसकी आवाज भर गई। मैं गाइड था। मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। 2 दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में 3 पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे 1, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे 2, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे 3, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी। हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी। उसमें हल्का सा कांप था।

खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापू राव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था, एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक। केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बापूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंड्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए।
किसी ने किसी को हक किया, किसी ने किसी के

आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे। और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं। उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करता है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये 7 लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और 7ों के 7ों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मंडली कसे आहात सगळे, ऑल गुड ना? हमारे प्यारे ऑडियंस की तारीफ में पेश है कुछ लाइनें। अर्ज किया है, स्वाद के जायके की वादियों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको न्योता देते हैं, आपकी मौजूदगी का हमें था बेसब्री से इंतजार। इस खुशी को हम दिल की गहराई से सजाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैंगो मूड वाला फूड हम फिर से बनाएंगे और इस आम वाले सीजन को खास बनाने हम फिर से हाजिर हैं। कच्चा आम मींस कैरी से बनी रेसिपीज तो हमने बना ली, उसके बाद पके हुए आम से भी कई सारी मीठी और तीखी रेसिपीज हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज हम एक मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। झटपट बनने वाली मैंगो रेसिपीज तो हमने सीख ली, अब सिस्टमैटिक तरीके वाली मैंगो रेसिपी को हम बनाते हैं। 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से होते हुए एक व्यंजन भारत आया, फिर भारतीय मसालों और सब्जियों के साथ इसने अपना रूप बदला। इस रेसिपी का नाम था वेज पुलाव। हरे मटर के दाने और साबुत मींस अखे गरम मसालों को इस्तेमाल करके बनता है मटर पुलाव। गाजर, आलू, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनता है वेज पुलाव। सब्जियों के साथ साथ अगर इसमें पनीर के टुकड़े भी डालें तो तैयार होता है पनीर पुलाव। और सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश के साथ पनीर और फलों के टुकड़े शाही अंदाज में पकाकर तैयार होता है नवरत्न पुलाव। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? तो जनाब सुनिए, पुलाव बनाते समय चावल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, बिरयानी बनाते समय चावल और करी को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उनकी परत मींस लेयर लगाकर दम दिया जाता है। यह है पुलाव और बिरयानी का इम्पोर्टेंट फर्क। अब हम आज की पहली रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मैंगो पुलाव। मैंगो के सीजन को बाय बाय करने से पहले हम इसे बना ही लेते हैं। मैंगो पुलाव ये एक मीठी रेसिपी है जिसमें अल्फोंसो मैंगोज को कुछ गरम मसालों के साथ बासमती चावल को यूज करके बनाया जाता है। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल 1 कटोरी, अल्फोंसो मैंगो पल्प 1 कटोरी, बारीक कटे हुए आम के टुकड़े 1 कटोरी, शक्कर 4-5 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, केसर के धागे 15 से 20, इलायची पाउडर 2 चुटकी, देसी घी लगभग 1/2 कटोरी। फिर हमें चाहिए लौंग 4 या 5, काजू बादाम के टुकड़े और किशमिश 4 चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़ों के बजाय आप उसका पाउडर लें तो पुलाव में थोड़ा सा तीखापन आएगा। फिर हमें चाहिए सोक्ड पिस्ता के स्लाइस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इस रेसिपी को सुनने से पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को धोकर लगभग 1/2 घंटे तक हम इसे पानी में सोक करते हैं। ऐसा करने से चावल के दाने पानी सोक कर फूल जाते हैं, जिससे वो पकते समय टूटेंगे नहीं। चावल के दानों की लंबाई भी बढ़ती है और उन्हें पकाते समय वो बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बन जाते हैं। लगभग 1 इंच ऊपर तक ताजे पानी में हमें बासमती चावल को सोक करना है। चलिए अब हम मैंगो पुलाव बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाले एक बर्तन में देसी घी को गर्म कीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। घी गरम होने के बाद उसमें लौंग डालिए, फिर दालचीनी के टुकड़े या पाउडर को भी डालिए। जैसे ही ये पक जाए मींस अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकंड्स के बाद इसमें 2 कटोरी पानी डालिए। थोड़े समय बाद उस पानी में उबाल आएगा, फिर उस उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें शक्कर भी डालिए।
साथ ही कटे हुए आम के टुकड़े भी उसमें डालिए। इस स्वाद को एनहांस करने हम डालेंगे ताजे नींबू का रस। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए सोक्ड बासमती चावल। फिर क्या करना है? अरे भाई, फिर धीमी आंच पर इन चावलों को पकने दीजिए। ये चावल जब पक रहे होंगे तब इसकी खुशबू आपको खुश कर देगी। लगभग 15-20 मिनटों के बाद ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद वो पके हुए चावल एक प्लेट में निकालिए। अब हमें इन चावलों को ठंडा करना है। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हमें गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हमारे बासमती चावल हो गए हैं ठंडे और हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। तो भाई आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि एक कढ़ाई में पाव कटोरी घी लेना है, फिर गैस को ऑन करके हमें घी को गर्म करना है। अब इस गर्म घी में हम डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दीजिए। आप गैस को बंद मत कीजिए। उस बचे हुए घी में फ्रेश मैंगो पल्प डालिए। धीमी आंच पर ये मैंगो पल्प 2-3 मिनटों तक अच्छे से पकाइए। ध्यान रहे ये जले नहीं। फिर उस पके हुए आमरस में डालिए पकाकर ठंडे किए हुए चावल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर और साथ ही आम के कुछ टुकड़े। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। आखिर में केसर, इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कीजिए। बाद में इस कढ़ाई पर एक ढक्कन रख दीजिए। 1-2 मिनट के लिए मींस एक भाप आने तक इसे पकने दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। एक सर्विंग प्लेट में तैयार मैंगो पुलाव को निकालिए। उस गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू को अपने मन में भी भर लीजिए। फिर सोक्ड और स्लाइस्ड पिस्ता के टुकड़ों से तैयार मैंगो पुलाव को डेकोरेट कीजिए। इस मैंगो पुलाव के साथ क्या खा सकते हैं? तो भाई इसके साथ आप खा सकते हैं आम का तीखा अचार या गोरी गोरी और क्रिस्पी कुरडई। और इसकी रंगत बढ़ाने के लिए आप एक ग्लास मट्ठा मींस मसाला छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हमारा मैंगो पुलाव हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने अगर आप हो रहे हैं बेकरार तो फिर इसे तुरंत बनाइए। अब ये मैंगो पुलाव बन जाए तब इसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाएं। एक और खास बात, मैंगो पुलाव को सोफिस्टिकेटेड तरीका I mean काटा चम्मच से मत खाइए, इसे अपने हाथों से ही बिंदास खाइए। अपनी उंगलियों से मैंगो पुलाव का टेम्परेचर और टेक्सचर फील कीजिए, फिर एक नजाकत से उसका निवाला उठाइए। खाने से पहले मैंगो पुलाव का अरोमा मींस जायका फील कीजिए, बाद में एकदम तसल्ली के साथ आराम से उसे एंजॉय कीजिए। इतना लजीज खाना खाने के बाद उस खाना बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए। इस मैंगो पुलाव की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है जश्ने आम। फिलहाल चल रहा है एक मौसम, नाम है जिसका आम। स्वाद का जायका इस शो पर जश्न मनाएंगे खास। कभी बनाया मैंगो पराठा तो कभी मैंगो सालसा, इस आम ने हमारे किचन में सेलिब्रेट किया जलसा। आम तेरे कितने रूप, मैं वारी जाऊं तुझ पे, इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर मैं तो इतराई खुद पे। नाम तो है इसका मैंगो या आम, स्वाद है एकदम अनोखा, तभी तो दिल में जगह इसकी खास। इस आम की रेसिपी ने मेरे दिल को इतना लुभाया, साइड में रख दी डाइटिंग और जी भर के आम खाया। मेरे भारत देश से जुड़ी ये आम बातें, दोस्ती होती पक्की खाना खाते खाते। आम का पुलाव बनाकर मनाया जश्ने आम, आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए एकदम खास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की ओर। आम के अलावा एक और चीज है जिसे गर्मियों के सीजन में जी भर के खाया जाता है। बॉटनिकली ये एक फ्रूट है, लेकिन ये मिलता है सब्जी वाले के पास। सैंडविच, कचुम्बर और सलाद बनाते समय इसे यूज करते हैं। इसमें 95% से ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अपने हाइड्रेटिंग गुणों और कुरकुरेपन के लिए ये फेमस है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से स्किन में चमक आती है, इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में इसे जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, सही गेस किया आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खीरा मींस ककड़ी की। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी। जब ककड़ी को किसी खास अंदाज में स्टाइलिश तरीके से पेश करना हो तब आप खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी को जरूर बनाइए। ये एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग और हेल्दी टाइप का ड्रिंक है, इसे आप लगभग 5 मिनट में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्यूकम्बर स्मूदी मतलब खीरा स्मूदी को बनाने की क्विक रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा सा एक खीरा मतलब काकड़ी, ताजा दही 1.5 कप, ताजा पुदीना 8 से 10 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, चीनी मींस शक्कर 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं चुटकी भर काला नमक ले रही हूँ। अब हम क्यूकम्बर स्मूदी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर मींस ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए, फिर पीलर से उसका छिलका हटाइए। छिलका हटाने के बाद उसके छोटे टुकड़े आप बनाइए। अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट बात, उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले खाइए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो वो ककड़ी आप फेंक दें, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है। कड़वी ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर उस ककड़ी को बारीक टुकड़ों में काट। अब हमें मिक्सर में स्मूदी को बनाना है। इसके लिए मिक्सर के बड़े जार में खीरा
मींस ककड़ी के टुकड़े और पुदीने के पत्ते डालिए। इसे एक मिनट के लिए मिक्सर में घुमाइए। ऐसा करने से इसका फाइन पेस्ट बनेगा। अब इसमें दही, शक्कर और नींबू का रस भी डालिए, साथ ही चुटकी भर काला नमक भी ऐड कीजिए। अब मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। लगभग एक या दो मिनटों में ये मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे पेश करने का टाइम हो गया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी शक्कर, लगभग आधा या एक चम्मच नमक और शक्कर मिक्स करके रखिए। फिर कांच का एक लंबा ग्लास लीजिए। उस कांच के ग्लास के किनारों को थोड़ा सा पानी लगाइए। फिर उस ग्लास को उल्टा करके नमक और शक्कर की प्लेट पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से होगा ये कि जब आप क्यूकम्बर स्मूदी को सर्व करेंगे तब उसके किनारों पर क्रिस्टल्स जैसी चमक दिखेगी और क्यूकम्बर स्मूदी का प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? फिर उस ग्लास में एकदम आराम से क्यूकम्बर स्मूदी को डालिए। उसके ऊपर पुदीना के दो पत्ते भी रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल कैमरा में क्यूकम्बर स्मूदी की छवि को कीजिए बंद, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस क्यूकम्बर स्मूदी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मखमली स्मूदी। गर्मी को भगाने के लिए बनाई क्यूकम्बर स्मूदी। इसका टेक्सचर ऐसा लगता जैसे खट्टा मीठा मखमली। ककड़ी में जब मिला ताजा ताजा दही, तब जाकर बना स्मूदी का टेक्सचर सही। इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक। काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन। झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना। उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉन स्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल पकोड़े, जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाएं? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम। आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आजी भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने। हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार, ऑडियंस जी जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

एवरीवन, वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों की गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आज़ादी के पहले की। जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कंधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना।

हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए, और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और 2 छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी, और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला। अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने, अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा,
अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा। अम्मी, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा? हम कैसे चैन से जी पाएंगे? हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे? हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे? हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे? अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी। उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है? अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, ग्रुप मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखें गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा। उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी। वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद, आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं, लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो। लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून तुकते हुए हंस पड़ा। फिर इतना डरते क्यों हो हमसे, ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आज़ादी। और अब धीरे धीरे वो आज़ादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आज़ादी के दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आज़ादी मिल सके, युवाओं के दिल में आज़ादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक! आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी, वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग! आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले आनंद, आनंद भाग! और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून एक आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। सो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएगी।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस जी? ऑल गुड ना? इस बार हम हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि। आप में से कई लोग नवरात्रि में उपवास या व्रत रखते होंगे, तो चलिए इस बार हम बनाते हैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज। हमारी फर्स्ट रेसिपी का नाम है वरीचा डोसा, मींस व्रत का डोसा, जिसे समा के चावल का डोसा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं वरई को हिंदी में समा के चावल इस नाम के अलावा और कौन से नाम से जाना जाता है? समा के चावल का दूसरा नाम है मोरधन। इस मोरधन मींस वरईचा डोसा का टेस्ट एकदम ही अच्छा होता है। इसे अक्सर नारियल की चटनी या व्रत वाले आलू के साथ परोसा जाता है। वैसे इस वरई का डोसा को फराली डोसा के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनल तरीके से पकाए हुए वरई के चावल तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका फॉर्म चेंज करके इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर पेश करना, यही तो है हमारी खासियत, क्योंकि आप जैसे प्यारे ऑडियंस का ख्याल रखना हमें बखूबी आता है। तो चलिए अब हम उपवास स्पेशल वरीचा डोसा बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वरीचा डोसा मींस व्रत का डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: समा के चावल या वरई 1 कटोरी, साबुदाना 1/2 कटोरी, पानी जरूरत के मुताबिक, दही 2 बड़े चम्मच, देसी घी अप्रोक्सीमेटली 4-5 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। तो चलिए अब हम उपवास स्पेशल वरईचा डोसा की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले वरई और साबुदाना को अलग अलग धो लेना है, फिर इसमें लगभग 1 इंच ऊपर तक पानी डालकर हमें भिगो कर रखना है। अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे के लिए हम इन्हें भिगो कर रखेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वाला पानी हटाकर हम वरई और साबुदाना को मिक्सर के जार में एक साथ मिक्स करके पीस लेंगे। हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। इस दौरान अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर दोबारा से इसे पीस लेंगे। इस मिश्रण में हम मिलाएंगे दही और नमक, इसे भी हम मिक्सर में डालकर मिला लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक नॉनस्टिक तवा या डोसा पैन, उसे हम गरम करेंगे। अब हम उस पर थोड़ा सा घी फैला देंगे। उस पर 1 कटोरी की मदद से हमें डोसा बैटर को स्प्रेड करना है। इस बैटर को स्प्रेड करने हम कटोरी की बेस को यूज करेंगे। अब उस डोसा को पूरी तरह से पकने तक हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। लगभग 5-10 मिनट के बाद हम एकदम संभाल कर उसे पलट देंगे। हर बार डोसा बनाते समय हम उस पैन पर थोड़ा सा घी लगा देंगे, फिर डोसा का बैटर डालकर उसे पकने देंगे। इस मेथड से हम सारे डोसा को बना लेंगे। भाई वाह, उपवास का डोसा, वो भी एकदम क्रिस्पी और टेस्टी, क्या बात! अब हम इसे पेश करेंगे नारियल की हरी चटनी और व्रत वाले आलू के साथ। भाई वाह वाह, इसे और खूबसूरत बनाने के लिए हम एक कटोरी में दही लेंगे। उस दही पर हम डालेंगे अनार के कुछ दाने। आहा, कितना टेम्पटिंग प्रेजेंटेशन है ना ये! अगर किसी का व्रत ना भी हो तो वो भी इसे खाने के लिए जरूर ललचाएगा। यकीन ना आए तो इस व्रत वाला डोसा को आप इस नवरात्रि में बनाकर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको ये उपवास स्पेशल डोसा जरूर पसंद आएगा। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

0: अरे तू बाहर क्यों बैठा है? अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा, एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाटकर चौल में, 1 घंटा दूर।
0: बिरवाटकर चौल वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार करी होगी। जा।
2: अरे बबलू, देख तेरे से कोई मिलने आया है।
3: ये बबलू है?
2: हाँ वही बबलू है।
3: तू बबलू है?

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। व्रत वाला स्पेशल डोसा तो हमने बना लिया, अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। डोसा के बाद कुछ मीठा हो जाए, चलिए अब हम बनाते हैं सिंघाड़े का हलवा। सिंघाड़ा मीन्स वाटर चेस्टनट, ये तालाबों और झीलों में उगने वाला एक पौष्टिक फल है। दिखने में ये ट्रायंगुलर शेप वाला होता है। ये मेनली सितंबर या अक्टूबर के सीजन में आसानी से मिलता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियां मजबूत होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में आप सिंघाड़े को जरूर शामिल कीजिए। दुकानों में सिंघाड़े का आटा आसानी से मिल जाता है। लगभग 10 मिनट में बनने वाली इस हेल्दी रेसिपी को आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर जरूर बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इसका लुत्फ उठाइए। चलिए अब हम सिंघाड़े का हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सिंघाड़े का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सिंघाड़े का आटा 1 कटोरी, देसी घी अप्रोक्सीमेटली 5-6 चम्मच, चीनी या ब्राउन गुड़ 1/2 कटोरी, पानी 2 या 3 कटोरी अप्रोक्सीमेटली, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, कटे हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स 2 चम्मच, दैट्स इट। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिंघाड़े का हलवा बनाने के इंग्रेडिएंट्स की बात की, अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हम घी को गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे सिंघाड़े का आटा। इसे चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। लगभग 5 या 7 मिनट के बाद इसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। ऐसा करने से पानी और आटा अच्छे से मिक्स होगा। अगर सारा पानी एक साथ डाला तो इसकी गुठलियां बन सकती है। इस दौरान इसे लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर या गुड़, इसे भी अच्छे से मिला लेना है। थोड़ी देर बाद ये मिश्रण गाढ़ा बनेगा और घी छोड़ने लगेगा। तब हम इसमें ऐड करेंगे खुशबूदार इलायची पाउडर। आहा हा, क्या खुशबू! हम गैस को बंद करेंगे और इस कढ़ाई पर अब हम ढक्कन रख देंगे। ऐसा करने से इलायची पाउडर की महक और टेस्ट उस हलवा में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। हमारा सिंघाड़े का हलवा अब हो गया है तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी इसे टेस्ट करने के लिए हो रहे हैं कितने बेकरार। अरे भाई, जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, ऐसी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़े प्यार से हम परोसेंगे सिंघाड़े का हलवा और बड़ी नजाकत से हम उस पर फैलाएंगे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। आहा हा, क्या बात! इसकी सात्विकता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इस पर एक तुलसी पत्र रख देंगे। ऐसा करने से इसकी सात्विकता और ज्यादा बढ़ेगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब एकदम श्रद्धा पूर्वक हम इस सिंघाड़े का हलवा का भोग माता रानी को लगाएंगे। फिर अपनों के साथ मिल बांट कर एकदम तसल्ली से इस सिंघाड़े के हलवा का लुफ्त हम उठाएंगे। कैसे? तो भाई, सबसे पहले अपने साफ और धुले हाथों से सिंघाड़े के हलवा का एक निवाला उठाइए। फिर उसका टेक्सचर और टेम्परेचर आप फील कीजिए। अब उसे एकदम आराम से अपने मुंह में स्वाहा कीजिए। आहा हा, गुड़ की मिठास और देसी घी का स्वाद, क्या बात भाई, मजा आ गया। जनाब, सिर्फ इमेजिन मत कीजिए, झटपट अपने किचन में जाइए और टेस्ट और हेल्थ से भरपूर इस सिंघाड़े के हलवा को आप बना ही दीजिए। इस सिंघाड़े के हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है सिंघाड़े का हलवा। नवरात्रि में खेलिए डांडिया और गरबा, व्रत के लिए बनाइए सिंघाड़े का हलवा। डांडिया की आवाज से सुमधुर लागे सुर, सिंघाड़े के आटे में देसी घी और गुड़, ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ी इलायची पाउडर, माता के दरबार में जयकारा हुआ लाउडर। साथ में लेकर अपने खाइए सिंघाड़े का हलवा, गरबा में हर कोई दिखाएगा अपना जलवा। एंजॉय कीजिए आप नवरात्रि के रंग, त्योहार में खुशियां और अपनों का संग। शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है दुर्गा देवी। सिंघाड़े का हलवा आपको नहीं बनाएगा हैवी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। भाई, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा का पर्व एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। मिष्टी दोई दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में खाई जाने वाली एक फेमस और ट्रेडिशनल मिठाई है। मिष्टी दोई को प्रेम, खुशी और मेल जोल का प्रतीक माना जाता है। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए आज हम इसे बना ही लेते हैं। षष्ठी हो या विजयादशमी, हर शुभ अवसर पर इस मीठे दही के प्रसाद को उपहार के रूप में खाया और खिलाया भी जाता है। परंपरागत रूप से इसे मिट्टी के बर्तन में धीमी प्रक्रिया द्वारा पकाया जाता था। ऐसा करने से इसमें सौंधी खुशबू और कैरेमल जैसा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम मिष्टी दोई की रेसिपी को सुनते हैं। मिष्टी दोई बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम मिल्क लगभग 1 लीटर, चीनी

दैट्स इट। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक बर्तन। इसमें हमें दूध को पकाकर आधा करना है। इस दौरान हम गैस की आंच को मध्यम गति पर रखेंगे। इसे पकाने के लिए अप्रोक्सीमेटली एक घंटा तो लग ही जाएगा। फिर ये दूध पककर गाढ़ा और आधा हो जाएगा। उसके बाद एक अलग पैन में हम चीनी को धीमी आंच पर पिघलाएंगे। कुछ समय बाद मींस अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के बाद चीनी मेल्ट होकर ब्राउनिश हो जाएगी। इसका मतलब चीनी कैरेमल फॉर्म में बदल जाएगी। अब इस कैरेमल को हम एकदम आराम से उबलते हुए दूध में मिलाएंगे। फिर उसे लगातार चलाते हुए अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट तक पकाना है। ऐसा करने से इसका कलर और टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। कैरेमल और दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। लगभग आधे से पौने घंटे के लिए हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय बाद इस दूध में हम मिलाएंगे जामुन। जामुन मींस दही। इस गुनगुने दूध में हमें मिक्स करना है फेटा हुआ जामुन मींस फेटा हुआ दही। पारंपरिक स्वाद के लिए हम इस मिश्रण को मिट्टी के कुल्हड़ या बर्तन में डाल देंगे। फिर उस बर्तन को हमें ढककर साइड में रखना है। यहाँ पर आप फॉइल या सूती कपड़ा यूज कर सकते हैं। अब इसे सेट होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10-12 घंटे तक किसी गर्म जगह पर रख देना है। ये दही जब जम जाए तब आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं इसे तुरंत खाना प्रेफर करूंगी। लेकिन उसके पहले हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेना है। फिर एकदम प्यार से उन ड्राई फ्रूट्स को हम मिष्टी दोई पर डाल देंगे। आहा, क्या बात! आप चाहे तो देसी गुलाब की पंखुड़िया और केसर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब माता रानी को इस मिष्टी दोई का भोग लगाना है। ऐसा करने से इसकी मिठास और ज्यादा बढ़ेगी। फिर आगे क्या करें? तो भाई आगे ये करना है कि हमें अपनों के साथ मिल बांटकर इस मिष्टी दोई का लुफ्त एकदम मजे से उठाना है। इसके लिए हम लेंगे एक चम्मच। उस चम्मच से हम मिष्टी दोई को उठाएंगे। फिर उसे बैलेंस करते हुए अपने मुंह में स्वाहा करना है। भाई वाह, ये तो मुंह में डालते ही पिघल जाता है। फिर दोबारा से इसका एक और निवाला खाना है। कैसे? वैसे ही जैसे पहले खाया है ना, अपनेपन वाला एहसास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस मिष्टी दोई की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है मिष्टी दोई। टेस्टी सी एक मिठाई, नाम है मिष्टी दोई। इसे पसंद करेगा आप में से हर कोई। इसका टेस्ट है एकदम ही सही, क्योंकि इसमें डाला हमने एकदम ताजा दही। पैन में पिघलाई हमने शक्कर थोड़ी। त्योहार और मिठाई, ये तो सुपर हिट जोड़ी। भारतीय परंपरा में अपने पन के रूट्स। मिष्टी दोई को सजाने आ गए ड्राई फ्रूट्स। हमारी आराध्य देवता माँ कालरात्रि, जरूर बनाइए मिष्टी दोई आप इस नवरात्रि। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाया उपवास स्पेशल डोसा मींस वरीचा डोसा। समा के चावल, साबुदाना और दही को पीसकर हमने उसका बैटर बनाया। फिर पैन पर घी लगाकर हमने उसका क्रिस्पी डोसा बना दिया। उपवास मींस व्रत में स्पेशल टाइप

डोसा भी खाया जाता है, ये आज हमने जान लिया। फिर हमने बनाया सिंघाड़े का मीठा सा हलवा। देसी घी में सिंघाड़े का आटा भूनकर हमने उसमें पानी और बारीक कटा हुआ गुड़ डालकर पकाया। फिर खुशबूदार इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालकर उसमें स्वाद का जायका ऐड किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं? जी बिल्कुल किया। उसके बाद हमने बनाया बंगाल का फेमस मिष्टी दोई। गाढ़े दूध में पिघली हुई गरम शक्कर डालकर हमने उसे जमाया, मींस दही के साथ मिलाकर 10-12 घंटे तक सेट किया। फिर ड्राई फ्रूट से सजाकर उस मिष्टी दोई का रूप और ज्यादा सुंदर बनाया। भाई, उपवास के खाने को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करो तो हर कोई उपवास कर ले, और उपवास ना हो तो भी वो इसे जरूर खाएगा। यकीन ना आए तो इस उपवास स्पेशल रेसिपी को आप बनाकर तो देखिए। आई एम डैम श्योर आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को जानने के लिए आप हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए, अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: अरे तू बाहर क्यों बैठा है, अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाड़कर चौल में, एक घंटा दूर।
0: बिरवाड़कर चौल वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार करी होगी। जा।
2: अरे बबलू देख, तेरे से कोई मिलने आया है।
3: ये बबलू है?
2: हाँ वही बबलू है।
3: तू बबलू है?
1: आप कौन?
3: मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी जान पहचान है तेरी। चल तेरी माँ को देखते हैं।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी काफी स्पेशल है। मैंने अब तक आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई, कुछ प्यार पे थी, कुछ लाइक सोशल मैसेजेस या बहुत अलग अलग तरह की कहानी, पहली ट्रेन जर्नी, पहली प्लेन जर्नी वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो कहानी है वो काफी स्पेशल है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम देखते रोज है पर कभी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और जो कुछ लोग करते हैं उनको शायद हम कभी हेल्प भी नहीं कर पाते। तो आज की कहानी है एनिमल रेस्क्यू की। मुंबई की एक बिजी सी सड़क, सुबह के करीब 8 बज रहे थे। रोड पर कार्स, बसेस, बाइक्स और ऑटो रिक्शास की लाइन लगी हुई थी। हर कोई अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जल्दी में था। किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को स्कूल जाना था, किसी को अपनी शॉप खोलनी थी और किसी को ट्रैफिक से निकलना था। लेकिन उस भीड़ भाड़ के पीछे एक छोटा सा पपी सड़क के कोने पर पड़ा हुआ था। उसकी एक टांग इंजर्ड थी, बॉडी पर चोट के निशान थे और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा, क्या कोई मेरी मदद करेगा। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, किसी ने देखा, किसी ने सिंपति दिखाई, किसी ने कहा बेचारा, लेकिन कोई रुका नहीं। तभी एक लड़का बाइक से आ रहा था। उसका नाम था आरव। आरव की एज 27 साल की थी। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, ऑफिस जाता था, घर संभालता था और अपनी जिंदगी में बिजी रहता था। एनिमल से उसे प्यार था, लेकिन वो कभी एनिमल रेस्क्यू करने वाला नहीं था। उसने बाइक स्लो की, पपी को देखा, फिर बाइक आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद

उसने ब्रेक दबाया, बाइक साइड में खड़ी की, हेलमेट उतारा और पीछे मुड़कर पपी को देखा। पपी अब भी वहीं था। आरव धीरे से उसके पास गया। ओह, क्या हुआ तुझे? पपी ने हल्की सी आवाज

सबको अपना काम है। ये लाइन आरव के दिमाग में अटक गई। सबको अपना काम है। उसने पप्पी को केयरफुली उठाया। पप्पी दर्द से कर्रा रहा था। बस बस बस, डर मत, डर मत, मैं हूं, आरव ने उस पप्पी को सहलाते हुए कहा। आरव अब उसे अपने बाइक पर लेके गया एक नियरेस्ट एनिमल हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पप्पी को चेक किया। पप्पी का लेग फ्रैक्चर है, बॉडी में इन्फेक्शन भी है। आरव ने पूछा, डॉक्टर ये बस तो जाएगा ना? डॉक्टर ने कहा, चांस है लेकिन ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। आरव ने बिना सोचे कहा, ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर ने पूछा, ओनर कौन है? आरव कुछ सेकेंड्स के लिए शांत रहा, फिर मुस्कुराया। ओनर तो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैं ही इसका ओनर हूं। पप्पी का नाम आरव ने रखा मोटू, क्योंकि वो छोटा सा था लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था पप्पी का। मोटू का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आरव रोज ऑफिस से पहले क्लिनिक जाता था, उसे खाना देता था, उसके हेड पर हाथ फेर कर कहता, तू ठीक हो जा, फिर हम दोनों वॉक पे जाएंगे। कुछ दिन बाद मोटू की कंडीशन इंप्रूव होने लगी थी, लेकिन आरव के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वो क्लिनिक से बाहर निकला, उसने देखा कि एक इंजर्ड कैट रोड के पास पड़ी थी। आरव फिर रुक गया, उसने उसे रेस्क्यू किया। फिर एक बर्ड, फिर एक इंजर्ड काउ, फिर एक अबॉन्डेड किटन। हर रेस्क्यू के साथ उसे एक बात समझ में आने लगी थी, प्रॉब्लम एनिमल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम अवेयरनेस और रिस्पॉन्स सिस्टम की कमी की थी। आरव ने सोशल मीडिया पर एक स्मॉल पेज बनाया और उस पेज का नाम था एक जान। उसने फर्स्ट पोस्ट अपलोड की, अगर आप रोड पर इंजर्ड एनिमल देखे इग्नोर मत कीजिए, अगर आप खुद रेस्क्यू नहीं कर सकते तो कम से कम किसी रेस्क्यूअर या वेटरनरी क्लिनिक को इन्फॉर्म कीजिए। इनिशियली उस पोस्ट को देखकर पढ़कर सिर्फ 17 फॉलोअर्स आए। अगले दिन वो फॉलोअर्स बढ़कर 50 हो गए और फिर अगले दिन बढ़कर वो 200 हो गए। एक दिन आरव का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में आरव एक इंजर्ड डॉग को रेस्क्यू कर रहा था। कैप्शन था, आपके लिए वो सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग हो सकता है, उसके लिए आप ही उसकी लास्ट होप हो सकते हैं। वीडियो को थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने शेयर किया और आरव को अब मैसेजेस आने लगे, सर मेरे एरिया में भी इंजर्ड डॉग है, सर एक कैट ड्रेन में फंस गई है, सर एक बर्ड की विंग इंजर्ड है, सर कोई स्नेक सोसाइटी के कंपाउंड में आ गया है। आरव अकेले सबके पास नहीं जा सकता था। तब उसने सोचा, मुझे सिर्फ एनिमल्स रेस्क्यू नहीं करने, मुझे एनिमल को रेस्क्यू करने वाले लोग बनाने हैं। फिर क्या, आरव ने की एक शुरुआत। आरव ने संडे को एक स्मॉल मीटिंग रखी, उसमें सिर्फ 6 लोग। आरव ने की एक शुरुआत। आरव ने संडे को एक स्मॉल मीटिंग रखी, उसमें सिर्फ 6 लोग आए। एक कॉलेज स्टूडेंट रिया, एक डिलीवरी बॉय समीर, एक रिटायर्ड टीचर जोशी सर, एक वेटरनरी स्टूडेंट मेहुल और एक शॉपकीपर इमरान, और छठा आदमी था आरव। आरव ने सबको देखा, हम कोई एनजीओ नहीं है। रिया ने पूछा, तो फिर? आरव ने बोला, हम एक नेटवर्क है, एनिमल रेस्क्यू नेटवर्क। प्लान सिंपल था, अगर किसी एरिया में एनिमल इंजर्ड मिले, लोकेशन शेयर होगी, फोटो वीडियो भेजा जाएगा, नियरेस्ट वॉलंटियर को अलर्ट किया जाएगा, एनिमल को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा, वेटरनरी ट्रीटमेंट अरेंज होगा, रिकवरी के बाद एडॉप्शन या रिहेबिलिटेशन की प्लानिंग होगी। सबने अग्री किया और नाम रखा एक जान रेस्क्यू नेटवर्क। शुरुआत में प्रॉब्लम्स बहुत आई, कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती थी।

0: कभी वेट अवेलेबल नहीं होता था, कभी लोग वॉलंटियर को रोक देते थे, कभी सोसाइटी के लोग कहते हैं अरे ये तो स्ट्रीट डॉग है, यहां से ले जाओ। कभी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता था, कभी रात के 2 बजे रेस्क्यू करना पड़ता था, लेकिन टीम रुकी नहीं थी। दोस्तों, एक कहानी जो एक इंजर्ड पपी मोटू से शुरू हुई, उसने कहीं ना कहीं आरव के दिल में एक ऐसी जगह बना ली थी एनिमल्स के लिए जिसे आरव शायद भुला नहीं पा रहा था। और उसी को दिमाग में रखते हुए आरव ने एक नई टीम शुरू की, वो टीम जो आरव के साथ खड़ी थी, वो 6 लोग जो अलग अलग जगह पे जाके एनिमल को रेस्क्यू करने लगे थे। लेकिन वीडियो वायरल हो गई, सब कुछ हो गया, लोग जुड़ नहीं रहे थे। अब लोग आगे जुड़ेंगे कैसे और नेटवर्क बढ़ेगा कैसे, या फिर कहानी में कुछ एक और नया मोड़ आएगा, हम ये सब जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी, एक पल तो अब हमें जीने दो।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्दे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। किसी भी चीज को बड़ा बनने के लिए उस चीज में कुछ एकदम ऐसा बड़ा होना पड़ता है ताकि वो चीजें सब तक पहुंच जाए, और वही मोमेंट अब आने वाला था आरव की जिंदगी में। एक रात 1:30 बजे आरव का फोन बजा। हेलो, दूसरी तरफ से एक लड़की रो रही थी। सर प्लीज हेल्प, सर सर प्लीज हेल्प। आरव ने बोला, क्या हुआ? मेरे बिल्डिंग के सामने एक डॉग है, उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से हिट किया है। आरव ने कहा, काम डाउन, लोकेशन बताओ अपनी। टीम के पास पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट थे। आरव, समीर और मेहुल तुरंत निकले। जब वो लोकेशन पर पहुंचे, डॉग रोड के मिडल में पड़ा था, उसके आस पास पूरा खून ही खून, पूरा ब्लड था। ट्रैफिक उसके पास से निकल रहा था। मेहुल ने चेक किया, ब्रीदिंग वीक है आरव। आरव ने कहा, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम थी, नियर बाय क्लिनिक सारे बंद, 24 आवर वेटनरी हॉस्पिटल 18 किलोमीटर दूर था, ट्रैफिक भी हेवी था। समीर ने कहा, मैं गाड़ी अरेंज करता हूँ। एक ऑटो ड्राइवर ने मना कर दिया, डॉग को ऑटो में नहीं ले जा सकता। दूसरे ने भी मना कर दिया। तीसरे ने कहा, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। तब एक कैब ड्राइवर वहाँ रुका, उसने पूछा, क्या हुआ भैया? आरव ने कहा, ये डॉग इंजर्ड हो गया है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। ड्राइवर ने कुछ सेकंड्स के लिए उस डॉग को देखा, फिर बोला, बैठाओ भैया, हम ले जाएंगे। आरव हैरान हो गया, आपको प्रॉब्लम नहीं है? ड्राइवर बोला, प्रॉब्लम तो है भाई, लेकिन जान बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जान बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। डॉग को कैब में रखा गया और वो हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। 20 मिनट बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, केस इज वेरी क्रिटिकल। आरव बाहर खड़ा था, उसके हाथ पर उस डॉग का फोन लगा हुआ था। रिया का फोन आया, सर। हाँ डॉग, आरव ने कहा, अभी फाइट कर रहा है। मैंने पूछा, बचेगा? आरव ने हॉस्पिटल के ग्लास डोर की तरफ देखा, पता नहीं यार, बचेगा या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन जब तक वो फाइट कर रहा है, हम भी फाइट करेंगे। लगातार 1.5-2 घंटे के बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद फाइनली डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, डॉग बच गया। और फिर उस डॉग का नाम रखा गया शेरू। शेरू को रिकवर होने में 2 महीने लगे। उसके बाद एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन शेरू की स्टोरी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब हुआ जब उस कैब ड्राइवर ने आरव को फोन किया और कहा, सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। उस रात मैं सोच रहा था कि मैं क्यों रुकूं। आरव चुप था। फिर ड्राइवर ने बोला, मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे लगा, अगर वो मेरी जगह होता तो क्या मुझे कोई भी ऐसे सड़क पर छोड़कर जाता। आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एनिमल रेस्क्यू का मतलब सिर्फ एनिमल्स को बचाना नहीं था, एनिमल्स को रेस्क्यू, इंसानों के अंदर ह्यूमैनिटी को भी जिंदा कर रहा। उनका असली मकसद था कि सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं है, पर जानवरों के प्रति इंसानों में सहानुभूति भी आनी चाहिए। कुछ महीने बाद एक जान रेस्क्यू नेटवर्क में 500 वॉलंटियर्स हो गए, और फिर वो 1 महीने बाद हो गए 1,000, और फिर हो गए वो 3,000। स्कूल स्टूडेंट्स अवेयरनेस ड्राइव करने लगे, कॉलेज में एनिमल फर्स्ट एड वर्कशॉप्स होने लगी, हाउसिंग सोसाइटीज ने फीडिंग जोन्स बनाए,
लोकल शॉप्स ने वाटर बॉल्स रखना शुरू किया, कुछ ऑटो ड्राइवर्स ने इंजर्ड एनिमल्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफर कर दिया, वॉलेंट्री डॉक्टर्स ने इमरजेंसी केसेस के लिए डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग एनिमल्स को प्रॉब्लम के रूप में नहीं, लिविंग बींग्स के रूप में देखने लगे थे। एक दिन आरव को एक स्कूल से इनविटेशन मिला। सर, हम चाहते हैं आप स्टूडेंट से एनिमल रेस्क्यू के बारे में बात करें। आरव स्टेज पर गया, उसने बच्चों से पूछा, यहां बैठे कितने लोग हैं जो एनिमल से डरते हैं? कुछ हाथ उठे। और कितने लोग हैं जो एनिमल्स को पसंद करते हैं? ऑलमोस्ट सारे हाथ उठे। आरव मुस्कुराया, जब एनिमल से प्यार करना अच्छी बात है तो एनिमल को बचाना अच्छी बात नहीं है क्या? लेकिन एनिमल से प्यार करना ही इनफ नहीं है, एक चाइल्ड ने पूछा, तो क्या करना चाहिए सर? आरव ने कहा, हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एनिमल को अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करो, इंजर्ड एनिमल मिले तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, ट्रेंड रेस्क्यूअर या वेट को कांटेक्ट करो, रोड पर एनिमल्स को हिट करने के बाद भाग मत जाओ, वाटर और शेड अवेलेबल हो तो प्रोवाइड करो, एडॉप्ट करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करो, पेट को ऐसे ही छोड़ मत दो। बच्चा बोला, सर अगर हम एक एनिमल को बचाएंगे तो क्या दुनिया बदल जाएगी? आरव ने कुछ सेकंड्स के लिए पॉज लिया, फिर बोला, शायद पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन उस एक एनिमल की जिंदगी जरूर बदल जाएगी। एक साल बाद फिर बारिश का मौसम आया, मॉनसून। मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी, बहुत ज्यादा हैवी रेन, रोड्स पूरे वाटर लॉग्ड हो गए थे, नदी के पास के एरिया फ्लडेड होने लगे थे। आरव के रेस्क्यू नेटवर्क को मैसेज मिला, 3 पपीज ड्रेनेज कैनल में फंस गए हैं, लोकेशन डेंजरस थी, वाटर लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। आरव की टीम को मैसेज मिला, आरव ने टीम को अलर्ट किया, सब सेफ्टी गियर के साथ आओ। टीम लोकेशन पर पहुंची, पपीज की आवाज आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। मेहुल ने कहा, वाटर लेवल और बढ़ रहा है। आरव ने रोप बांधी, मैं नीचे जाता हूं। समीर ने तुरंत कहा, नहीं भाई नहीं, मैं जाता हूं। आरव बोला, रिस्क है। समीर हंस पड़ा, रेस्क्यू नेटवर्क में रिस्क नहीं होगा तो नाम चेंज करना पड़ेगा भाई। सब हंस दिए, लेकिन सिचुएशन सीरियस थी। समीर केयरफुली नीचे गया, पहला पपी निकाला, फिर दूसरा पपी निकाला, लेकिन तीसरा पपी मिल नहीं रहा। समीर, कुछ दिखा? आरव ने टॉर्च ली, सडनली एक छोटी सी आवाज आई, यहां यहां यहां, पपी एक पाइप के अंदर फंसा पड़ा हुआ है और पानी उसके अराउंड रैपिडली फ्लो कर रहा है। समीर ने हाथ अंदर डाला, पपी डर के मारे पीछे चला गया। आरव बोला, स्लोली स्लोली, उसको फोर्स मत करो। समीर ने अपना हैंड आगे किया, कम ऑन बड़ी, कम ऑन, बाहर आ जा, कम ऑन। पपी धीरे धीरे धीरे धीरे उसके हाथ के पास आया। समीर ने उसे पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही पपी बाहर आया, टीम ने चेयर किया, तीनों पपीज सेफ थे। लेकिन उस रात एक और चीज रेस्क्यू हुई, और वो थी नेबरहुड की।
दोस्तों, 6 लोगों की टीम अब बढ़कर 3,000 लोगों की टीम हो चुकी थी, और जहाँ जहाँ एनिमल को रेस्क्यू करने की कोई भी नोटिफिकेशन आता तो टीम हमेशा अवेलेबल होती, और उसी टीम ने आज 3 पपीज़ को भी रेस्क्यू किया। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो था वो था समाज में एनिमल्स के प्रति, जानवरों के प्रति जागरूकता निर्माण करना। तो वो जागरूकता कैसे आएगी, सुनते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। अब वो तीन पपीज तो बच गए, बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग था, लेवल्स भी बहुत ज़्यादा था पानी का, लेकिन फिर भी आरव और उसकी टीम ने उन तीन पपीज को बचा लिया। उसके बाद अगले ही दिन वही एरिया के रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई। एक अंकल बोले, हमारे एरिया में बहुत स्ट्रेरी एनिमल्स हैं। एक लेडी बोली, हम उनके लिए शेल्टर कॉर्नर बना सकते हैं। एक शॉपकीपर बोला, मैं डेली पानी रखूंगा। एक टीनेजर बोला, मैं फीडिंग शेड्यूल बनाऊंगा। और एक एल्डरली वुमन बोली, मैं अपने टेरेस पर इंजर्ड बर्ड्स के लिए स्मॉल रिकवरी स्पेस बना सकती हूँ। आरव बस सबको देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस चेंज का सपना उसने एक साल पहले देखा था, अब वो धीरे धीरे रियलिटी बन रहा था। एक दिन आरव अपने रेस्क्यू सेंटर में बैठा था, तब एक फैमिली अंदर आई। उसके साथ एक बड़ा हेल्दी डॉग था। आरव ने उसे देखा, पहले तो पहचाना नहीं, फिर डॉग उसके पास आया, उसने आरव के हाथ को स्मेल किया और सडनली उसकी टेल वैग करने लगा। आरव को कुछ स्पेशल फील हुआ, एक अलग एहसास, एक ऐसा एहसास जिसकी शायद कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं, या जिसका जिसको महसूस शायद जिंदगी में एक या दो बार ही किया जाता है। एक वैसा एहसास आरव को हुआ और वो एहसास आरव को इमोशनली कर गया और आरव के आंख में आंसू आ गए। मोटू, हाँ ये वही मोटू था। वो 2 साल बाद एक जान रेस्क्यू नेटवर्क एक लार्ज कम्युनिटी इनिशिएटिव बन चुका था, लेकिन आरव ने कभी इसे अपनी सक्सेस नहीं मानी। एक अवार्ड सेरेमनी में उसने स्टेज पर जब बुलाया गया तो उसने कहा कि मैंने सोसाइटी को कुछ नहीं दिया। ऑडियंस साइलेंट हो गया। आरव बोला, सोसाइटी ने मुझे एक इंजर्ड पपी दिया, मुझे एम्पैथी दी, एक कैब ड्राइवर ने मुझे ह्यूमैनिटी दिखाई, वॉलंटियर्स ने मुझे नेटवर्क सिखाया, डॉक्टर ने कंपैशन सिखाया, चिल्ड्रंस ने होप दी, एनिमल्स ने मुझे एक सिंपल लेसन सिखाया, जान छोटी हो या बड़ी हो, जान जान होती है। आरव की ये सारी बातें सुनकर वहां बैठी हुई ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगी। बातें सुनकर वहां बैठी हुई ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उसके आगे आरव ने कहा, हम अक्सर सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए बड़े सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन चेंज कभी कभी बहुत छोटी जगह से स्टार्ट होता है, एक बाउल पानी से, एक रेस्क्यू कॉल से, एक इंजर्ड एनिमल को रोड से सेफ साइड करने में, एक एडॉप्शन से, एक अवेयरनेस पोज से, या सिर्फ रुककर किसी हेल्पलेस जान को देखने से। बदलाव कहीं से भी आ सकता है, रेस्क्यू कहीं से भी शुरू हो सकता है। आरव की ये सारी बातें सुनकर पूरा जो हॉल था जहां पे वो सारे लोग बैठे हुए थे, वो एक साथ खड़े हो गए और सब आरव को स्टैंडिंग

ओवेशन देकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब ने आरव के वर्क को रिकॉग्नाइज किया, सब ने उसकी मेहनत को सलाम किया, उसके जज्बे को सलाम किया। और अंत में कुछ महीने बाद आरव एक बिजी रोड से जा रहा था। उसने देखा एक छोटा सा पपी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ट्रैफिक फास्ट था, आरव ने बाइक स्लो की, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं रुका। उसके पीछे एक ऑटो ड्राइवर रुक गया, फिर एक कार, फिर एक डिलीवरी बॉय। तीनों लोग उतरे, उन्होंने ट्रैफिक स्लो किया, पपी को सेफली रोड के उस पार किया। पपी कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता रहा, फिर टेल हिलाकर भाग गया। आरव मुस्कुराया, उसने किसी को कॉल नहीं किया, किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, किसी को रेस्क्यू करने नहीं बोला, क्योंकि अब लोग खुद समझने लगे थे रेस्क्यू एक आदमी का काम नहीं रहा था, वो पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका था। आरव ने बाइक स्टार्ट की और जाते जाते उसने रियर व्यू मिरर में देखा, तीन टीनेजर्स एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे। किसी का नाम नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था कि उन्होंने एक जान बचाई थी, और शायद उस छोटी सी जान के साथ उन्होंने अपने अंदर की इंसानियत को भी बचाया था। क्योंकि एक एनिमल को रेस्क्यू करना सिर्फ उसकी जिंदगी बचाना नहीं होता, कभी कभी वो रेस्क्यू हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा और इंसान बना देता है। और शायद इसीलिए हर जान की कीमत है, और हर मदद मैटर करती है, और हर छोटी सी काइंडनेस एक बड़ा बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। कहानियाँ जिंदगी में बदलाव जरूर।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरी ने मेरा साथ दी। संतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: खैरियत देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
3: हाँ, हो जाए, हो जाए, हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।
6: Yeah.

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम, ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो, खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना, सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो, स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना, दुनिया के मानने से हाय हुआ है जोश, सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश, खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें

0: आयन और एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग एक चुटकी नमक ले रही हूँ। देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: Yes, sir. Is that clear? Yes.

से इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर एक चौथाई ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए, फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल, उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी, और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोथमीर की हरियाली, आहा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 FM सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इन्हें भूनकर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है, लेकिन आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा। और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, बॉइल स्वीट कॉर्न के दाने 2 कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज 1, बेसन 1/2 कटोरी, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कोथमीर 4-5 चम्मच, करी पत्ता 5-6, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने की थोड़ी तैयारी कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स के दाने। हमें उन स्वीट कॉर्न्स के दानों को बिना पानी डाले पीसना है। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखिए, हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज, उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गरम करेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकोड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहां पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह। उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए।
आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है। थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब, इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा, बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अपम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया बारिश सीजन स्पेशल एक पकौड़ा। बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, बेसन, चावल का आटा और कुछ मसाले डालकर हमने पकोड़ा का बैटर बनाया। फिर अपम पात्र में एकदम कम तेल में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया। इस प्रकार बारिश के मौसम को हमने हमारे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस के साथ एकदम टेस्टी और हेल्दी स्टाइल से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया।

आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। गांव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खास करके गांव की नदी, वो नदी जिससे न जाने हमारे कितने बचपन के सपने जुड़े होते हैं, कितनी कहानियां जुड़ी होती है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो नदी किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। कभी अगर एक्साइटेड होते हैं तो उसी नदी में डुबकी लगाते हैं और स्विमिंग करने लग जाते हैं। तो गांव की नदी से एक खास रिश्ता जरूर होता है। तो ऐसी कहानी एक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, नदी के पार वाला सपना। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भवानीपुर में सुबह का मतलब अलार्म नहीं होता था, सुबह का मतलब होता था मुर्गे की आवाज, कुकड़ुक, सुबह 4:30। मिट्टी की खुशबू और दूध वाले के बर्तनों की खनक, और साथ ही साथ वही गांव में रहते थे केशव और उसकी पत्नी गंगा। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छत पे पुराने टीन के पत्रे और आंगन में एक नीम का पेड़। पर उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो थी प्यार। केशव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस 3री तक स्कूल गया था। उसके बाद पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। अब वो गांव के मंदी में बोरियां उठाता था, कभी किसी के खेतों में हल चलाता था, कभी ट्रैक्टर चलाता था। महीने के मुश्किल से 15,000 रुपए कमा पाता था। और गंगा भी अनपढ़ी थी, नाम लिखना तक नहीं आता था, पर दिल समंदर से भी ज्यादा बड़ा था। वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी, पहले चूल्हा जलाती थी, फिर पानी भरने को किलोमीटर तक दूर कुएं तक जाती थी, कपड़े धोती थी, बकरियों को चारा देती थी और शाम तक घर संभालती थी। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक चीज थी जो गंगा को रोज नोटिस होती थी, केशव का थका हुआ चेहरा। रोज सुबह वो साइकिल लेकर मंडी जाता था, मंडी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर थी। चाहे बरसात हो फिर गर्मी या सर्द हवा, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, केशव साइकिल चलाता ही रहता। और कई बार उसकी साइकिल रास्ते में खराब भी हो जाती थी, कभी चैन टूट जाती, कभी टायर पंचर हो जाता। एक बार तो तेज बारिश में वो गिर भी गया था। उस दिन रात को गंगा ने उसके पैर दबाते हुए पूछा था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? केशव मुस्कुरा दिया, अरे पगली, आदमी का शरीर काम करेगा तभी तो घर चलेगा। पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान गंगा देख चुकी थी। उस रात गंगा ने पहली बार एक सपना देखा, अपने पति को बाइक पर बैठकर हंसते हुए देखने का सपना। अगली सुबह केशव मंडी चला गया, गंगा रोटियां बना रही थी, तब उसकी नजर पुराने स्टील के डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठाया, साफ किया और धीरे से बोली, इसमें जमा करूंगी पैसा। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो केशव को एक बाइक गिफ्ट करके रहेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। 15,000 में राशन, बिजली, दवाई, कपड़े, ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन गंगा ने ठान लिया था, उसने खुद पर खर्चा करना भी कम कर दिया था। नई साड़ी बाद में ले लेंगे, मेला जाना बंद, चूड़ियां भी बाद में ली जाएगी। कभी कभी तो वो अपनी चाय में चीनी कम डाल देती थी ताकि 1-2 रुपए बचा सके। केशव को कभी पता नहीं चला, हर महीने वो किसी ना किसी तरीके से 2,000 रुपए बचा लेती, कभी दूध बेचकर, कभी दूसरों के घर पापड़ बनाकर, कभी सिलाई करके, और वो पैसे छुपा देती उस स्टील के डब्बे में। हर बार पैसा डालते वक्त वो डब्बे को हाथ लगाकर बोलती, एक दिन मेरा केशव बाइक पे जाएगा, साइकिल पे नहीं। समय धीरे धीरे गुजर गया, 3 साल बीत गए,
पूरे 3 साल तक गंगा ने हर महीने पैसे बचाए। कभी बुखार, कभी सर दर्द, इन सारी हालतों में काम किया। कभी कभी भूखी भी सोई। एक बार केशव ने कहा भी, गंगा तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वो हंस पड़ी, बस थोड़ी थकान है। उसने कभी सच नहीं बताया। एक दिन गांव में मेला लगा, सारी औरतें सच धज कर गई, चंदा भी गई। चंदा गंगा की सबसे अच्छी दोस्त थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, गांव के लोगों के लेटर्स भी वो पढ़ती थी। चंदा ने पूछा, तू मेला नहीं आएगी? गंगा ने झूठ बोला, मन नहीं है। असल में उसके पास पैसा था, पर वो पैसा उसके सपने का था। उस रात जब केशव सो गया, गंगा ने डब्बा खोला, उसने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। 72,000 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा और फिर मेरे केशव की बाइक आ जाएगी। फिर मेरा केशव बाइक पर बैठकर सारा गांव घूमेगा, अपने काम पर जाएगा, मुझे अपने बाइक पर पीछे बिठाकर मेला घुमाने लेके जाएगा। न जाने ऐसे कितने सपनों में गंगा खो गई। फिर दोस्तों, गांव की कहानियां कितनी प्यारी होती है, कितनी सिंपल होती है, कितनी सरल होती है, लेकिन इन कहानियों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत उस किरदार को उठानी पड़ती है जो वो कहानियों को जीता है। तो इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम इस ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना और हमने देखा और हमने सुना कि कैसे गंगा ने 72,000 रुपए बचा लिए अपने केशव के लिए। और अब देखते हैं कि किस तरीके से गंगा केशव को बाइक गिफ्ट करेगी। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था, उसका नाम था अजय। अजय थोड़ा गलत व्यवहार वाला लड़का था और लोगों गलत लोगों के साथ रहकर वो चोरी चकारी शराब पीना जुआ खेलना कर्जा न जाने कितनी कितनी चीजों में फंसा हुआ था। उसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। गांव वाले उससे दूर रहते थे। एक दिन वो रात को शराब के नशे में घूम रहा था, तब उसने गंगा को स्टील का डब्बा छुपाते हुए देख लिया। अजय की नजर पैसे पर पड़ गई। उसने सोचा, लगता है काफी पैसा है। उस रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था डब्बा। उस रात तेज हवा चली, केशव थककर गहरी नींद में था, गंगा भी सो गई थी। आधी रात को अजय धीरे से घर के पीछे अंदर घुसा। उसने चूल्हे के पास मिट्टी हटाई और उसे स्टील का डब्बा मिल गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक धक धक धक धक कर रहा था। बस एक बार ये पैसा मिल जाए। वो डब्बा लेकर भाग गया। सुबह गंगा ने जैसे ही डब्बा चेक किया, उसकी सांसें रुक गई। डब्बा गायब था। पहले उसे लगा शायद कहीं और रखा होगा। उसने पूरा घर उल्टा दिया, आंगन छान लिया, चूल्हा भी पूरी तरीके से खोद दिया, बिस्तर पलट दिया, सब कुछ कर लिया, पर डब्बा नहीं मिला। उसके पैर कांपने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। पर उसी वक्त केशव घर के अंदर आ गया। गंगा तुरंत आंसू पहुंचने लगी और चुप हो गई। क्या हुआ, केशव ने पूछा। कुछ नहीं, गंगा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तू रो रही है, केशव ने बोला। नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही, गंगा ने जवाब दिया। केशव ने उसका माथा छुआ। तबीयत खराब है क्या, गंगा बस झूठी मुस्कान देकर रह गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया दिल टूटने की आवाज सच में होती है। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गंगा चुपचाप घर से निकली। उसके पैर सीधा गांव के बाहर वाली नदी की तरफ बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में बैठा करती थी। नदी के पास पहुंचते ही वो टूट गई। वो इतनी घुटन भरी थी उसके अंदर कि जैसे वो नदी के पास पहुंची, वो जोर जोर से रोने लगी। नदी माँ, मैंने क्या गलत किया, उसकी आवाज हवा में घूमने लगी। 3 साल तक मैंने पैसे जोड़े, मैं बस अपने पति को खुश देखना चाहती थी। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, बस एक बाइक देना चाहती थी उसको मैं। वो रोते रोते ये सारी बातें बोलती गई। मैं उसे एक तोहफा देना चाहती थी, पर सब खत्म हो गया।

बिखर गया। उसे नहीं पता था कि गंगा जब ये सारी बातें कर रही थी, कुछ दूर पेड़ के पीछे अजय खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ में वही डब्बा था और पहली बार उसे अपनी चोरी पर शर्म आ रही थी। अजय चुपचाप गंगा की बातें सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसने डब्बा खोला, अंदर साफ सुथरे नोट थे, कुछ पुराने कुछ नए, और एक छोटी सी कागज की पर्ची। उस पर गंगा ने अपनी तरफ से कुछ बना रखा था, एक आदमी, एक बाइक और उसके पास दिल का निशान। अजय की आंखें भर गई। उसे याद आया कि उसकी माँ भी उसके लिए पैसे बचाती थी, और आज वो दूसरों की उम्मीद चुरा रहा था। नदी के किनारे गंगा अब भी रो रही थी। भगवान, बस मुझे मेरा सपना दे दो, मुझे मेरा सपना लौटा दो। अजय का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैं कितना गिर गया हूं। उस रात उसने पहली बार शराब की बोतल फेंक दी। रात गहरी हो चुकी थी। केशव घर के बाहर बैठा था, गंगा का इंतजार कर रहा था। तू इतनी देर तक कहां थी, केशव ने पूछा। गंगा ने झूठ बोला, चंदा के घर थी। केशव ने कुछ नहीं पूछा। रात को दोनों सो गए, और आधी रात अजय फिर उस घर के पास आया, पर इस बार चोर बनकर नहीं, पछताया हुआ इंसान बनकर। उसने धीरे से वही डब्बा उसी जगह वापस रख दिया, और उस 72,000 रुपए के साथ उसने उसमें कुछ अपने पैसे भी रख दिए, लगभग 15,000। उसने एक कागज निकाला, उस पर लिखा, माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, पर आपका प्यार देखकर समझ गया कि गरीबी से बड़ा गुनाह इंसानियत खोना होता है। अजय ने नोट डब्बे के नीचे रख दी और चुपचाप चला गया। अगली सुबह को क्या हुआ, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आ रहा है एक ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सुन रहे थे कि अजय ने वो डब्बा फिर से वहां वापस लौटा दिया। अब अगली सुबह क्या हुआ तो चलिए देखते हैं अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह गंगा ने आदत से डब्बे वाली जगह देखी और उसकी चीख निकल गई, हे भगवान! डब्बा वापस था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत डब्बा खोला, पैसे भी थे और पहले से ज्यादा थे। उसकी आंखें भर गई, आंसू गिरने लगे, ये कैसे हुआ? फिर उसकी नजर कागज पर पड़ी, पर वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकती थी। उसने कागज संभाला और सीधा चंदा के घर भागी। चंदा, चंदा! चंदा बाहर आई, चंदा ये पढ़ना, इस पे क्या लिखा है? चंदा ने कागज लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो वर्ड्स बोलती गई, गंगा की आंखों से आंसू बहते गए। माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, मैं पैसे ले गया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया। चंदा ने पढ़ना रोका। गंगा, तेरा पैसा किसी ने चुराया था क्या? गंगा चुप हो गई, उसने नोट को अपने सीने से लगा लिया। भगवान उस इंसान को सही रास्ता दिखाया, बस ये कहकर गंगा अपने घर आई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई बाइक आई, काली चमकदार बाइक। केशव ने दूर से देखा और बोला, वाह क्या बाइक है। तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल। किधर चल? अरे बस चल। और दोनों बाइक के पास चले गए और गंगा ने कहा, अब आंख बंद करो, आंखें बंद करो। केशव ने आंखें बंद की और गंगा ने धीरे से उसका हाथ आगे खींचा और केशव के हाथ में रख दी उस बाइक की चाबी। केशव हैरान, ये क्या है? तुम्हारी बाइक। केशव हंस पड़ा, पागल है क्या? नहीं, सच में तुम्हारी बाइक है। कहां से आई ये बाइक? गंगा ने मिक्स्ड इमोशन वाली आवाज में कहा, 3 साल से पैसे जोड़ रही थी केशव। केशव चुप हो गया। दोनों के आंखों में आंसू थे, खुशी वाले थे या गम वाले थे इसका पता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि दोनों बहुत खुश थे। तू मेरे लिए? गंगा मुस्कुराई, तुम रोज साइकिल पे इतना दूर जाते थे ना। केशव ने तुरंत उसके पैर छू लिए। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? केशव ने जवाब दिया, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी ताकत है गंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे और मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। और पहली बार उस वक्त केशव ने गंगा से 5 साल में पहली बार कहा, आई लव यू। उस दिन दूर से अजय सब देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया था कि इंसानों के पैसे नहीं, इंसानों को नीयत से अमीर होना होता है। कुछ दिनों बाद अजय ने चोरी छोड़ दी, गांव के मैकेनिक के पास काम शुरू कर दिया। लोग उस पर पहले भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन केशव बाइक सर्विसिंग के लिए गया उसी गैरेज में जहां अजय काम करता था। अजय ने बाइक पहचान ली, वही बाइक जिसके लिए एक औरत ने 3 साल सपना देखा था। अजय की आंखें भर गई। केशव बोला, क्या हुआ? अजय हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं भैया, बस बाइक बहुत खास है। ये कहकर अजय अंदर चला गया। एक शाम गंगा फिर उस नदी के पास गई, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने पानी को देखकर कहा, उस दिन मैंने दर्द बताया था, आज खुशी बताने आई हूं। हवा धीरे से चली, जैसे नदी भी मुस्कुरा रही हो। दूर केशव बाइक लेकर आ रहा था। गंगा! वो हंस पड़ी और भागकर बाइक पर बैठ गई। केशव ने पूछा। कहाँ चले?
1: गंगा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाँ सपने पूरे होते हैं।
0: बाइक धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी
1: और पीछे
0: पीछे नदी की लहरें चुपचाप एक कहानी सुना रही थी कि सच्चा प्यार कभी चोरी नहीं होता, वो तो और बढ़ जाता है।
1: तो दोस्तों, हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना, एक ऐसी कहानी जहां केशव और गंगा एक पति पत्नी हैं। एक पत्नी ने अपने पति के लिए एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए उसने दिलो जान से मेहनत की। उम्मीद है कि ऐसी कहानियां हमारे अगल बगल में भी होती होंगी, पर शायद हम कभी उसे देखते नहीं या महसूस नहीं कर सकते, या कभी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि किसी की छोटी से छोटी मेहनत भी उस इंसान के लिए क्या मायने रखती है। तो बस आज के कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगली बार ज़रूर मिलेंगे कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर जो आपकी दिल को छुए। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्टन दोस्त आजय शब्बीर साइनिंग ऑफ।

0: श्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भाई कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस जी, ऑल गुड ना? गणेश चतुर्थी के सीजन में सब अच्छा ही होता है और हमारे स्वाद का जायका इस शो पर कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज को ट्राई करने का एक और अच्छा बहाना हमें दोबारा से मिला है। महाराष्ट्र में त्योहार तो कई सारे मनाए जाते हैं और गणपति मीन्स गणेशोत्सव में सेलिब्रेशन मतलब एक से एक टेस्टी खाने का मौसम है कि नहीं। वैसे हम सबके फेवरेट गणेश जी के स्वागत में कई सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे कि मोदक, लड्डू, पूरनपोली, शीरा, पायसम या खीर वगैरह वगैरह। ये सब तो मिठाइयां हैं, अब मीठा खाएं तो कितना खाएं भाई साहब। गणेश जी की आरती के समय तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान चने की दाल को यूज करके एक चटपटी सी रेसिपी को बनाया जाता है। वाटली दाल इस नाम से फेमस रेसिपी को खाना मींस मिठाई खाने के बदले कुछ इंटरेस्टिंग और टेस्टी खाने वाली फेवरेट बात इस तौर पर हम देख सकते हैं। ये एक टाइप का ड्राई स्नैक है। वाटली इस शब्द का मीनिंग है पीसी हुई और दाल तो हम सब जानते ही है, वाटली दाल मतलब पीसी हुई दाल। भिगोई हुई चना दाल को दरदरा पीसकर कुछ मसालों के साथ भूनकर तैयार किया जाता है। अब हम इस वाटली दाल की रेसिपी को सुनते हैं। वाटली दाल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, चना दाल एक कटोरी, इसे अच्छे से धोकर 4-5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना है। हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 3-4 हरी मिर्ची ले रही हूँ। जीरा एक छोटा चम्मच, अदरक 1 इंच, इसे धोकर कद्दूकस कर लेना है। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। तेल 2 बड़े चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ता 10 से 12 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, शक्कर 1/2 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच, ताजा नारियल कद्दूकस करके अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। भाई हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तो अब हो गए हैं तैयार और वाटली दाल की रेसिपी सुनने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं कितने बेकरार। तो चलिए अब हम इस वाटली दाल की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे भिगोई हुई चना दाल। हमें चना दाल को पीसना है। इस प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा पानी को हटा देते हैं। उस चना दाल में हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची के टुकड़े और जीरा। फिर हम डालेंगे अदरक, हल्दी और थोड़ा सा नमक। इन सब के साथ हमें डालना है हमारा मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार। अब इन सब चीजों को हमें दरदरा सा पीस लेना है। ध्यान रहे कि मिक्सर में पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अब इस पीसी हुई दाल को हम ट्रांसफर करेंगे एक बर्तन में। इस बर्तन को हम प्रेशर कुकर में रखेंगे। मध्यम आंच पर लगभग 2 सीटी होने तक हमें इसे पकाना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई लगभग 2 सीटी आने तक हमने चना दाल को पका लिया है। अब लगभग 20-25 मिनट तक हम प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तब हम एक चम्मच की मदद से दाल को अलग अलग कर देंगे। अब इस पकी हुई दाल को हम लगाएंगे खुशबूदार तड़का। इसके लिए एक कढ़ाई में हम गरम करेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे राई। राई को आप चटकने दीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे जीरा, हींग और कड़ी पत्ता। आहाहा, क्या महक! कड़ी पत्ता को डालते ही हम गैस को बंद कर देंगे। फिर इस खुशबूदार तड़के में हम डालेंगे पकी हुई दाल, उसके साथ नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर। एक चम्मच की मदद से हमें इसे मिक्स करना है। भाई जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब हम लेंगे सुंदर सी एक कटोरी। उस कटोरी में बड़े प्यार से हम डालेंगे कढ़ाई वाली दाल। फिर उस पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर और उसके साथ कद्दूकस किया हुआ ताजा ताजा नारियल। भाई वाह, येलो कलर की चना दाल पर हरी कोथमीर और सफेद नारियल जैसे के सुनहरी धूप से खुश हरियाली और हरियाली के साथ चमकती हुई बर्फ, क्या बात! यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। Stay tuned.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी वाटली दाल अब भोग लगाने के लिए तैयार हो गई है। अब इसकी सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे एक तुलसी पत्र। अब बड़ी श्रद्धा से अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे। आरती होने के बाद इस वाटली दाल का हम भोग लगाएंगे। ऐसा करने से इसकी सात्विकता और ज्यादा बढ़ेगी। यकीन ना आए तो इस वाटली दाल को आप एक बार जरूर बनाइए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस वाटली दाल को एक बार और जरूर मांग कर खाएंगे। भाई, हमारी संस्कृति और परंपरा की यही तो

खासियत है, क्योंकि स्वाद और सेहत इन दोनों बातों को हम भोग के प्रसाद के रूप में खाते हैं और इसे अकेले नहीं बल्कि अपनों के साथ मिल बांटकर खाते हैं। इस वाटली डाल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है वाटली डाल। गणेश जी के स्वागत में तरह तरह के भोग, मीठे खाने संग चटपटी दाल का संयोग। सिर्फ मीठा खाकर अगर हो रहे हो बोर और टेस्ट बर्ड्स करे चटपटा खाने का शोर, तब पेश कीजिए आप चटपटी वाटली दाल। इसे खिलाकर पूछिए आप अपनों का हाल। भिगोई चना दाल संग अदरक और मिर्ची, वाटली दाल को खाने सबकी नजर तिरछी। गरम तेल में डाला राई जीरा का तड़का, इसे पसंद करे हर लड़की और लड़का। तड़के में डाला राई और जीरा, कोथमीर संग नारियल जैसे हरियाली में हीरा। इसका स्वाद निखारने डाला नींबू का रस, मिक्सर में किया चना दाल को क्रश। वाटली दाल का टेस्ट है एकदम विशेष, तैयारी हुई है पूरी, अब पधारेंगे श्री गणेश। श्री गणेश के लिए हमारी छोटी सी सेवा, थाली में सजाइए मोदक लड्डू और मेवा। देसी खाने में है सेहत का राज छिपा, हेल्दी फूड के भोग से होगी बाप्पा की कृपा। आचार्य 90 FM पर स्वाद और सुरों की जोड़ी, विघ्नहर्ता के स्वागत में हमारी भी कोशिश थोड़ी। हमें आशीर्वाद देता गौरी पुत्र का हाथ, सब्सक्राइब आचार्य 90 FM और दीजिए हमारा साथ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चटपटी सी वाटली दाल तो हमने बना ली, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई गणेशोत्सव तो कई दिनों तक सेलिब्रेट होता है और हमारे गणपति बाप्पा को हर रोज नया मींस कुछ अलग टाइप का भोग लगाया जाता है। वैसे हमारा पारंपरिक स्टाइल वाला खाना बनाने से हमारी सेहत बिल्कुल अच्छी ही रहती है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप NDFM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमारे महाराष्ट्र में एक स्पेशल भोग को चढ़ाया जाता है। पांच या पांच से ज्यादा खाद्य सामग्रियों को एक साथ मिक्स करके बनने वाला ये ट्रेडिशनल और फेमस प्रसाद है। ये टेस्ट में मीठा होता है। खिरापत इस नाम से फेमस इस रेसिपी को आज हम हमारे आचार्य 90FM के स्टूडियो में बनाने वाले हैं। इसे पंच खाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद आसान और टेस्टी महाराष्ट्रियन रेसिपी है। चलिए अब हम खिरापत बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। खिरापत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सूखा नारियल मींस खोपरा, इसे कद्दूकस कर लेना है, और हमें अप्रोक्सीमेटली एक कटोरी भर के कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल चाहिए। फिर हमें चाहिए सूखा खजूर मींस खारिक, जिसे ड्राई डेट्स कहते हैं, ये लगभग 7 से 8, खसखस 1 बड़ा चम्मच, खड़ी साखर मींस मिश्री 4 चम्मच, किशमिश 2 चम्मच, इलायची 4। खिरापत बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सूखा नारियल तो हमने पहले ही कद्दूकस करके लिया है। अब हम खजूर को बारीक टुकड़ों में काटेंगे या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इलायची का पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको हमेशा वाली एक टिप देना चाहती हूँ। साबुत इलायची को थोड़ी शक्कर के साथ मिक्सर में पीसने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। फिर हम लो फ्लेम पर खसखस को भून लेंगे मींस लगभग 3-4 मिनट तक। अब मिश्री यानी कि खड़ी साखर को मिक्सर के जार में डालकर उसका पाउडर बनाना है। अब हमें लो फ्लेम पर नारियल को भी भून लेना है। इसे हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक मींस अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तक भून लेना है। फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे मिक्सर का जार। उस जार में हम मिक्स करेंगे खसखस और खजूर को। इसे एक साथ मिलाकर हमें इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना नारियल। फिर पल्स मोड पर हम मिक्सर को चलाएंगे लगभग 3-4 बार बस। अब हम इसमें डालेंगे मिश्री मींस खड़ी साखर पाउडर, इलायची पाउडर और किशमिश। इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। दैट्स इट। अब इस तैयार खिरापत को हम रखेंगे चांदी की सुंदर सी कटोरी में। फिर एकदम श्रद्धा से हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद इस खिरापत का भोग हम बाप्पा को लगाएंगे। उसके बाद क्या करें? तो भाई आरती होने के बाद अपनों के साथ मिल बांट कर इस खिरापत का लुत्फ मजे से उठाइए। भाई बारिश के मौसम में ऐसा हेल्दी फूड खाना, वो भी बाप्पा के प्रसाद के रूप में, ये तो एकदम अच्छी बात है। और अपने साथ हो तब इसकी मधुरता और निखर कर स्वाद लाती है। अगर आपको यकीन ना आए तो इस गणेशोत्सव पर आप इस खिरापत को जरूर बनाइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90FM के गीत गुनगुनाइए। इस खिरापत की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मिठास वाली खिरापत। हेल्दी खाना खाने की दिखेगी शराफत, श्री गणेश जी की आरती में मिठास वाली खिरापत। जंक फूड खाना हेल्थ वाइज है रिस्की, खिरापत में डाला भुना खोपरा क्रिस्पी, खोपरे संग डाला थोड़ा सूखा खजूर, और भी चीजें डाली हैं, जरा सुनिए तो हुजूर। ड्राई डेट्स और खोपरे संग खसखस और इलायची, पारंपरिक खिरापत खाइए, ये नहीं है विलायती। मधुरता को बढ़ाने डाली खड़ी साखर, खुश होंगे आप खिरापत को खाकर, जब स्वाद और संस्कृति मिल जाए एक साथ, तब अपनापन जताने की
खाने और खिलाने की बात। विघ्नों को हरने पधारे हैं श्री गणेश। हुआ खुशियों का आगमन, नमन तुम्हें हे विघ्नेश। श्री गणेश का मीनिंग नई सी शुरुआत। आचार्य 90 FM पर न्यू रेसिपीज हर बार। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाई एक चटपटी सी वाटली दाल। भिगोई हुई चना दाल में हरी मिर्ची को डालकर हमने पीसा, फिर उसमें अदरक, हल्दी और नमक को भी ऐड किया। उसके बाद इसे प्रेशर कुकर में पकाकर राई, जीरा और हींग का छौंक लगाया, फिर धनिया और ताजा नारियल से उसे सजाया। उसके बाद हमने बनाई एक पारंपरिक रेसिपी। रोस्टेड खोपरा, खसखस और खारिक मींस ड्राई डेट्स को एक साथ मिलाकर उसमें शक्कर और इलायची को मिक्स किया। इस प्रकार गणेशोत्सव के इस पावन पर्व को हमने एकदम पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी? बिल्कुल किया। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।